सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ तू ठाकुर ऊच भगवाना सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ सोरठ महला पंजवा दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी अपना बिरद समारिया दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया

नारायण दंता भाने डायना नारायण सद सद बक सिंदा नारायण कीने सुख आनंदा नारायण प्रगट कीनो परताप नारायण संत को माई बाप नारायण साध संग नारायण बारंग बार नारायण गायन बस्ती अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास कही

आप पे देवड़ियां आप पे कर्म कराईंदा वड्डो वड्डा वड्डी में जनी सिरा सितन दे लाईंदा नदर पट्टी जे करा सुता न काओ

जित जम हे राजा पंड हो ही पंड उपजै बंडे बाजना कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए भागर तीचार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको।

0: आपे भांडे साजियां आपे पूरण दे, एक नी दुध समाई है चुले रहन चढ़े, एक ने हाली पै सवने कुपर रहन खड़े, तिना सवारे ननका जिन को नदर करे महला दूजा।
1: आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप तिस विच।

तौपी हमें मैल न जाए। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, घर गुमान न मनते हुटे, मन की मैल न तनते जात, मनते कबू न बिख्या टरे, शुद्ध कहा हुए काची पीत, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, अनेक जतन का त्रिशन न त्रापे, कोट पाव दरगे नहीं सिज्जे, मोहे व्यापे माया जाल, गोविंद भजन मिल तिन नहीं माने, नानक झूले सहज सुभाए।

एक बस कारण खोट गवावे तो मूड़ा कहका करे ताको कीजे सर नमस्कारा सर्व सुख ताहू मन बुठा सर्व थोक नानक तिन पाया खात पीत बरते आनंद उलास अज्ञानी मन रोस करे बहुर उसका विश्वास न होवे प्रभु की आज्ञा मानने माथे नानक साहिब सदा दयाल सर पर होवत जान अनेत ओ बिनसे ओ मन पछतावे लपट रियो ते अंध अंधार ताको हाथ न आवे के कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या हमे ममता माया मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या आपस उपर गर्त गमान नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या हस्त पा दर्व को हिरहे मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद अन पर लोभ लवावे मिथ्या बास लेत बेकारा सफल दे नानक हर हर नाम ले साच बिना कह होवत सुचा मुखावत ताके दुर्गंध मेघ बिना जो खेती जाए के पिंड रार्थ दाम नानक ताके बल बल जाओ मन ने प्रीत मुखो गंडलावत बाहर पेख न काहू पीन जावत जन्मे मरे जिसकी सीख तरे संसार नान कुंजन चरण पराता अपना किया आपे माने किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा सब को जाने आत्म की रहत तनंतर हसमाए सो सेवक जिस कृपा करी जापना।

साम सगलीकोत साध के संग प्रगटे सो ज्ञान सा संग सब होत नवेरा साध के संग एक ऊपर जतन नानक साध की शोभा परम माहे समानी साध के संग सदा पर फुल्ल सा संग अमर रस पंचा साध के संग मनोहर बैन साध के संग अस्तित मन पावे सा संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साधु के संग महापुनीत साध के संग न बीगा पैर सा संग जाने परमानंदा के संग तजे सब आप नानक साध प्रभु बने आए साध के संग सदा सुख पावे साधु के संग अजर सहे साध के संग केवल पार ब्रह्म नानक साधु के कुर्बान साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साध के संग शोभा सुर देवा साध संग अमृत गुण गायन नानक साध के संग सफल जन्म दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग नरक पर हरे साध संग बिछरत हर मेला साध के संग न बिरथा जावे नानक उदरे साध सुन रसे साध संग हर के गुण गाओ सा संग सर पर निस्तर है साधु के कस अटकट डीठा सा संगत पई हमारी नानक साध पेटे संजोग जेता सुने तेता वख्याने साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलो मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख है एक बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टप्रह जैसे जल में कलम अलेप जैसे सूर सर्व को सोख जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ज्यो बस्ता को खोदे को चंदन लेप नानक जो पावक का सहज सुभाओ जैसे मैल न लागे जला जैसे तार ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान मन अपना है सबते नीचा नानक जिन प्रभ आप करे आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं ब्रह्म ज्ञानी पारोपकार माहा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला नानक ब्रह्म ज्ञानी बिछपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ सांग ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
ब्रह्मज्ञानी हम बुत्यागत ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी एक संघेता ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी का वड़ प्रताप ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब जीवे नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्मज्ञानी आप नर ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी।

कर्ण करावन करने जोग खिन में थापु थापन हारा हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार कर कर देखे अपनी वड़ियाई प्रभावे मानुगत पावे प्रभावे बिन शास्ते राखे प्रभावे ता पत तू धारे दोहा सरिया का आप स्वामी जो पावे सो कार करावे कहा मनुख मानुख ते क्या होए आवे इसके हाथ होए ता सब किचले अनजानत बिख्या महरचे पर मैं पूला दे दिस्तावे कर कृपा जिस अपनी भगत दे खिन में नीच कीच का राज जाका दृष्ट कछु ना आवे जाको अपनी करे बख्शीस जियो पिन सब तिसकी रास अपनी बनता बनाई इसका बल नाही इस हाथ आज्ञाकारी बपरा जियो कभू ऊंच नीच में बसे कभू निंद चिंद व्यवहार कभू बेता ब्रह्म विचार कभू नृत्य करे बहपात कभू महाक्रोध विकराल कभू होए बह बड़ राजा कभू अब कीर्त में आवे जो जो प्रभ राखे तिव ही रहे कभू होए पंडित करे बख्यान कभू तट तीर्थ स्नान कभू कीट हस्पतांग होए जिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे ज्योतिष पावे सोई होए कभू सा संगत हो पावे अंतर होए ज्ञान प्रकाश मंतन नाम रते एक रंग ज्यों जल में जल आए

संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, नानक सत्संग निंदक पी तरे, संतन के दुखन कागजो लवे, संत के दुखन त्रिक जोन किरमाए, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन नीच नचाए, नानक संत पावे तो ए पीगत पाहे, संत का निंदक टिकन न पाए, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत के निंदक को सदा वियोग, नानक संत पावे ता उसका पी होए बो। संत के दुखी को सब त्याग है, संत का दुखी सदा बेकारी, संत की दुख सुख ते नानक संत पावे, संत का दुखी किसे का नहीं पहुंचे, संत का दुखी उजड़ पाइए, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा, आपन बीज आपे ही खा है, नानक संत पावे ता लै उबार, जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए, जो पावक इंधन नहीं त्रापे, जो बुआड़ तिन खेत माहे दोहिला, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी न मरे न जिवाइये, संत का दुखी उठ चले निराशा, जैसा पावे तैसा कोई होए, नानक जाने सच्चा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार, तिसे त्यावो सास ग्रास, जैसा करे तैसा को थिया, दूसर कहे बीचा, जिसनु कृपा करे तिसे आपन नाम दे, वड भागी नाम।

सर्व जिया पे प्रतपाल, तिस्ते व्यर्था कोई ना है, अवनाशी प्रवापे आप, जैसे प्राणी लोचे कोए, गत नानक जप एक हर नाम, प्रभु की जो सगल कट सो है, जा सब कुछ तिरका दिया दर्ब है, प्रभु की कला बिना कहता वै, तिस देन हार जाने गवार, नानक सोजन सदा रोग, त्यों गुर का शब्द मने असमन, प्राणी गुरचर लगत निस्तरे, गुरदर्शन देख मन होए बिगास, त्यों साधु संग बिल जोत प्रगटावे, नानक की हर लोचा पूर, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, अवर त्या तू किसे चितार, पूला काए फिरे आ जान, लप्र रो रस लोभी पतंग, नानक पासे ती कर जाहे, राम नाम हृदय में तोल, त्याग बिख्या जंजाल, मुख जल हर दर के सोए, अर्प साध को अपना जियो, साध ऊपर जाइए कुरबान, साध संग हर कीर्तन गाइए, हर गुण गाए अमर रस चाखे, सर्व सुख नानक तह पाया, भूखे को देवत धार, पूर्व लिखे का लेना पाहे, जिसमें दूसर हुआ न होग, सबते ऊच निर्मले करनी, नानक सोजन निर्मल थिया, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जाके हृदय एको होए, सच हृदय सच मुख कैत, सच वर्ते साचा पास पार ब्रह्म जिन।

राष्ट्रपति पूजा सत सत सेव नाम सत सत्याम आपे गुण आपे गुणकारी सत सत जा सुनता नानक सत सत प्रभ सोए कन कर रावन तेन मूल पछानिया तत् ग्यान तिसमर पटाया तिस माही समाना ताको पिन न कहना जाए नारायण मिले नानके ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक की राखे निरंकारा नानक सो सेवक सा सा समारे अपने सेवक की सर पर राखे अपने सेवक को नाम जपाई ताकि गतमित कोई न लाखे प्रभ के सेवक उचते ऊचे नानक सो सेवक पसम करे लश्कर कोट लाके ताको राख दे कर हाथ तिस्ते करतब बिरथे जात सरब दिया का राखा सोए जप नानक प्रवलक बड़ानी पी अमृते मन तंत्र पिए तिस्क चवन नाही दुष्टाया नामो सुकर नाम का संग मंता नामे नाम समाने कौ नानक जन के सद काम प्रभु अपने जन की निदात प्रभु अपने का हुक्म पछाने तुस्ता गुण का एक न जानो कौ नानक से जन पूरे अपना तिन जन दे सोजन सर्व थोक का दाता तिसके दर्श पाम मटावे।

जाचक जन जाचे प्रवदान साजना की मांगो तूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो चरण कमल सो लागे प्रीत एक ओट एको आधार प्रभ की दृष्ट महासुख होए जिन चाख्या से जन तृप्ताने सुबर प्रे प्रेम रस रंग परे सरनान सब त्याग वडभागी जपया प्रभ सोए सेवक की मनसा पूरी पई जन को प्रभु होयो दयाल बंधन काट मुक्त जन पया इच पुण्य श्रद्धा सब पूरी जिसका साथन लिया मिलाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे सो क्यों बिसरे जे बेख ते काढ़े गुर पूरे तते हे बुझाया साजन संत करो ए हुकाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो भक्त पाए तरिये संसार सर्व कल्याण सुख निध नाम सगल दुख का होवत नास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ नेत्रों पे दर्श सुख होए भक्त जना के मन तन रंग एक बस दीजे कर माया ताकि उपमा कही न जाए प्रभु बख्शंद दीन दयाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल आज पुर कारण करतार जो जो जपे सो होए पुनीत हम निर्गुण यार नीच जान सर्व विकुंठ मुक्त मोख पाए अनेक राज भोग वड़ियाई बहु भोजन कापर संगीत पली सुकरनी सो वातनवंत साध संग प्रभ देहो निवास नानक परगा।